अपनी वृथा को हर अपने स्वामी पे, अपनी वृथा को हर अपने स्वामी पे, जो तुम्हारे दुख तत्काल कटासा, जो तुम्हारे दुख तत्काल कटासा, सो ऐसा

कै मन लाजुम रसा, अवरा पै कै मन लाजुम रसा। महाराज सतगुरु जी वचन कर रहे ने पाई, जो मन दी बिरथा है ये वाहगुरु अगे आख, किसी मनुख कोल ना कहो। ये बंदा मन दी बिरथा, मन दी गल लोकां पास करदा, मन लोकां पास फरोलदा। महाराज कहते नहीं, जे लोकां कोल गल करेगा अपना दुख दसेगा, वो तेनू भी दुख होर सुना दूगा। बंदे कोल मन ना फरोल, वाहगुरु पास फरोल। मन दी गल गोज गल जी की कीजे सतगुर पास। जो मन दी गल है ऐ मनुख, जो तू किसे कोल नहीं कह सकदा तो गुरु कोल कह दे, वाहगुरु कोल कह दे। गोज गल जी की कीजे सतगुर पास, ता सर्व सुख पाई। मन दी गल कोई वरी है कोई दुख है, गुरु नू आ। महाराज वचन कर दिए ने, जे अपनी बिरथा कहो अवरा पै, ता आगे अपनी बिरथा बहु बहुत खडास। अपनी बिरथा कहो हर अपने स्वामी पै, जो तुम्हारे दुख तत्काल कटासा। वो वाहगुरु अगे बेनती कर, जेड़ा एक छिन विच वो दुखां नूं दूर करन दी समर्था रखदा है। महाराज इस वचन विच

अलग अलग हैं, पर जोत ओहा चुगत साई सह आया फेर पलटती। पर एक गल किसी किसी ने समझी, किसी ने आख्या ए गुरु होर ओ गुरु होर, इस दी मर्यादा कुछ होर, उस गुरु दी मर्यादा कुछ होर। भाई गुरदास साहब जी कहना कहते ने इस भुलेखे विच ना रहियो, जे इस गलत फहमी विच रहा कि जो घर विच सुख साधन होण वह भी मुक जाणगे। गुरु कलगीधर पातशाह कहते ने जिन जाना तिन ही सिद्ध पाई, बिन समझे सिद्ध हाथ न आए। रिधियां सिद्धियां उन्हां दे घरां विचों जांदियां रहियां, जिन्हां ने आख्या ए गुरु कुछ होर ओ गुरु

खत्री शब्द सुर शब्द शुद्ध शब्द प्राकृत सर्व शब्द एक शब्द जो जाने पियो नानक दास है सो नंदन दियो महला दूजा एक किस्म सर्व देवा देव देवा आत्मा आत्मा।

0: तेरा कर्म जित भेटे साधु के चरण।
1: भगवान राम
2: पेरनी दी चुगी विच पहुंचे हैं। भगवान जिना रहा तू आयो ना रहा तू मैं सदके जाऊं। कुछ आदास छाया पीलनी ने त्रेता युग दे मालिक भगवान रामचंद्र जी बैठ गए। महाराज मैं गरीबनी ते बख्शिश कीती है ना? नहीं पीरनी ते

जो हमरी बिद होती मेरे सतपुरा जो हमरी बिद होती मेरे सतपुरा साबित तुम हर जानो आपे साबित तुम हर

जो पिन सतसा सब कुछ है तेरा, माणा में माणे तू तने तेरा परवासा, बिन साचे अंतिक है सो जानू काचा।

जियो तुम्हारी कृपा ते तुद पछाणा तुम्हारी ओट तुहे मेरा माणा तो बिंदु जा और न कोई सब तेरा खेल अखाड़ा जियो तुर बिंदु जा और न कोई सब तेरा खेल अखाड़ा जियो क्या कहिए किस आस सुनाइए जो कहना सो प्रभु जी पास सब किचू किता तेरा वरते सदा सदा तेरी आस जिदे वड्याई ता तेरी वड्याई जे

अपनी कृपा करे। चरण कमल नाल खड़ा दे किस दिन आम की पत परमेश्वर गत नारायण तन गोपाल गुण साखी चरण

मध्यन होत साधु तुरे आवण जानू रे थित पाई जन मरन के मिटे वसूरे गुर नारायणू दाज गुरु गुर सच्चा सिद्धन हार गुर तुठे सब कुछ पाया जन मानक सब बनिहार हर गुण गाओ सा सुपाई हर गुण गाओ सा सुपाई मन तिंदे